बातें और ढेर सारे गाने। आप सुन रहे हैं नॉनस्टॉप गपशप, नॉनस्टॉप गपशप 107 एफएम रेनबो पर। नॉनस्टॉप गपशप, नॉनस्टॉप गपशप 107 एफएम रेनबो पर। एफएम रेनबो पर।

10:03 है स्टूडियो की घड़ी का समय 107 एफएम रेनबो पर शर्मिशा हाजिर हो चुके हैं आप सभी के मनोरंजन के लिए और लेकर भी आई हूँ साथ कार्यक्रम नॉनस्टॉप गपशप जो कि आपका भी और मेरा भी पसंदीदा कार्यक्रम है क्योंकि इसमें नॉनस्टॉप गपशप के साथ होती हैं ढेरों गीतों को सुनाए जाते हैं सुने जाते हैं और आज है दिन बहुत ही खास जी हाँ भाई आज मुबारक दिन है और कार्यक्रम की शुरुआत में सभी श्रोताओं को ईद की ढेरों मुबारकबादें तो चलिए इसी के साथ तो शुरुआत करते हैं आज के इस कार्यक्रम की

ईद की मुबारक बातें देते हुए आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। जी हाँ, 107 FM रेनबो चैनल आपने ट्यून किया है और न्यूज़ ऑन एयर ऐप पर भी हमारे इस प्रसारण को आप सुन पा रहे हैं, सुन रहे हैं कार्यक्रम नॉन स्टॉप गपशप। और आज के इस कार्यक्रम को आप सुन रहे हैं आपके रेडियो दोस्त शर्मिशा के साथ। और मुबारक दिन है आज। जी हाँ, ईद के पर्व को पालन किया जा रहा है और ऐसे में जी हाँ, किसी भी मुबारक दिन में हम ईश्वर से, अल्लाह से, हमारे ऊपर वाले से यही तो चाहते हैं ना कि हमारे आसपास रहने वाले जो लोग हैं, जी हाँ, जो हमारे चहेते हैं और जो हमारे चहेते हैं भी और नहीं भी, उन सब की रक्षा करना है ना, उन सब की दिल की जो तमन्ना है उसे ज़रूर हमारे

ऊपर वाले आप पूरा करना, यही तो चाहते हैं ना हम ऊपर वाले से। तो चलिए हमारे दिल की बात पहुंचाएं हमारे ऊपर वाले तक आवाज़ अदनान सामी की। अदनान सामी की आवाज़ में इस गीत को सुने, गुनगुनाएं और अपने दिल की बात पहुंचाएं हमारे ईश्वर तक, हमारे अल्लाह तक।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

10:21 है। स्टूडियो घड़ी का समय संघ आप शर्मिशा के सुन रहे हैं कार्यक्रम नॉनस्टॉप गपशप। और चलिए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और गपशप करते हैं किसी और विषय को लेकर। अच्छा, कई बार हम बातों बातों में ये कहते हैं ना कि आम खाओ गुठलियाँ क्यों गिन रहे हो, लेकिन अगर मैं कहूँ कि अब गुठलियों को गिनने का भी वक्त आ चुका है, जी हाँ, गुठलियों को भी गिनना ज़रूरी है क्योंकि एक एक कर गुठलियाँ आखिर बहुत कुछ बदल सकती हैं। तो क्या मानेंगे आप इस बात को? अगर नहीं तो चलिए इसके बारे में आपको थोड़ा बहुत बताऊं। एक आम की गुठली जिसे हम अक्सर बिना सोचे समझे कचरे में फेंक देते हैं, वही आज हरियाली उम्मीद और कमाई की नई कहानी लिख रही है। एक छोटी सी सोच ने ऐसा जो रूप है उसे लिया है कि बच्चे गुठलियां इकट्ठा करने लगे हैं, किसान उन्हें खेतों में संजोने लगे हैं और धीरे धीरे ये पहल एक जन आंदोलन बनकर देश से निकलकर दुनिया तक पहुंच चुका है। ये कमाल है गुठले मैन यानी कि श्री जसमीत सिंह अरोड़ा का, और जिन्होंने एक साधारण विचार को करोड़ों पेड़ों के सपने में बदल दिया और पर्यावरण संरक्षण को लोगों की भागीदारी से जोड़ दिया। तो सुना आपने, एक छोटी सी सोच कितना कुछ बदल सकता है। आज ये गुठली मिशन एक समग्र समाधान बन चुका है जो बच्चों की पर्यावरण शिक्षा, किसानों का सशक्तिकरण, प्रदूषण में कमी, खाद्य सुरक्षा, कार्बन क्रेडिट, इसके अलावा निर्यात आय और स्थायी हरित आवरण के निर्माण जैसे कई क्षेत्रों को एक साथ संबोधित करता है। ये धीरे धीरे धान और गेहूं जैसे अस्थायी हरित आवरण की जगह स्थायी हरियाली का विकल्प भी बन रहा है। इसीलिए मैंने कहा था कि आजकल गुठलियों को भी गिनना ज़रूरी है, यानी कि गिनना मेरा मतलब है कि आप जितने भी आम खा रहे हैं उनकी गुठलियों को यहाँ वहाँ ना फेंक कर अगर इकट्ठा करते हैं तो वाकई में हरियाली का जो सपना है, जी हाँ, हमारा हरियाली का, वाकई में आजकल हरियाली के बारे में हम सिर्फ सोच ही सकते हैं क्योंकि जिस तरीके से प्रदूषण हमारे शहर में, हमारे देश में फैलता जा रहा है, हरियाली अब एक सपने की तरह लगता है। ऐसा लगता है कि वाकई में सदियों पुराना जो समय था उस तरह की जो हरियाली थी, क्या वाकई में आज के समय में उस हरियाली को हम दोबारा देख पाएंगे या नहीं? तो ये जो सपना है ये पूरा हो सकता है हमारे एक छोटी सी सोच से, हमारे एक छोटी सी कोशिश से। और कोशिश बस इतनी ही करनी है कि जब भी आप आम खा रहे हैं, आम का सीज़न है, भरपूर तरीके से आप आम का मज़ा तो ज़रूर उठाने वाले हैं इस सीज़न में, और आम आप खाते रहें लेकिन साथ ही साथ गुठलियों को फेंकना नहीं है बल्कि गुठलियों को एक साथ करके हरित क्रांति के बारे में सोचना है और हर एक गुठली से एक भरपूर पेड़ तैयार हो सकता है। इसी सोच को लेकर आम की गुठलियों को फेंकना बंद करना है बल्कि जमा करना है। और चलिए, तो मैं बात कर रही थी एक छोटी सी सोच से हम कितना कुछ बदल सकते हैं, है ना? वाकई में ये जो सोच है, ये सोच कहीं ना कहीं से तो आती है और जैसे ही हमारे दिमाग में घंटी बजती है कुछ नया करने की, कुछ बदलने की, तो शुरुआत जो है वो सबसे पहले हमारे घर से होती है, है ना? हमारे घर से हम छोटी सी शुरुआत करते हैं और उसके बाद ये जो सोच है वो धीरे धीरे आगे बढ़ती है, बढ़ती चली जाती है और बाद में हम घर से लेकर बाहर भी इस सोच को फैला सकते हैं। तो चलिए, फिलहाल कार्यक्रम चल रहा है नॉन स्टॉप गपशप जिसमें बातें होती हैं ढेरों और साथ ही साथ गीत भी सुनते हैं और सुनवाते हैं। इसी कार्यक्रम में तो बातें होंगी और भी, लेकिन फिलहाल एक प्यारा सा गीत आवाज़ अरिजीत सिंह की।

बातें और ढेर सारे गाने आप सुन रहे हैं नॉनस्टॉप गपशप, नॉनस्टॉप गपशप 107 FM रेनबो पर, नॉनस्टॉप गपशप।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

बातें और ढेर सारे गाने। आप सुन रहे हैं नॉनस्टॉप गपशप, नॉनस्टॉप गपशप 107 एफएम रेनबो पर। नॉनस्टॉप गपशप, नॉनस्टॉप गपशप 107 एफएम रेनबो पर। एफएम रेनबो पर।

0: आकाशवाणी एट 90।
1: थोड़ी सी बातें और ढेर सारे गाने, आप सुन रहे हैं नॉनस्टॉप गपशप। नॉनस्टॉप गपशप 107 एफएम रेनबो पर। नॉनस्टॉप गपशप 107 एफएम रेनबो पर। एफएम रेनबो पर।
2: दस बजकर 33 मिनट हो चुके हैं स्टूडियो की घड़ी में और संगे आप शर्मिशा के सुन रहे हैं कार्यक्रम नॉनस्टॉप गपशप। और आज के इस कार्यक्रम में जी हाँ बातें हो रही हैं ढेरों, साथ ही साथ एक से बढ़कर एक गीत भी पहुंचाए जा रहे हैं आप सभी सुनने वालों तक। तो भाई ईद का पावन पर्व है और आपको क्या लगता है कि पावन पर्व में बिना मीठे के ये त्यौहार मन जाएगा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा तो होने वाला नहीं है। और ये जो तीज त्यौहार होते हैं ये होते ही इसलिए है ना कि लोग एक दूसरे से अपने दिल मिलाते हैं, गले लगते हैं और साथ ही साथ मीठे का बंटवारा भी होता है। जी हाँ, एक दूसरे के घर में मिठाइयाँ पहुँचाई जाती हैं, सिर्फ और सिर्फ मिठाइयाँ नहीं बल्कि दिल से दिल भी मिलाए जाते हैं। और यहाँ तो ईद के पर्व की बात हो रही है और ईद बिना सिवाई के मन जाएगी ऐसा लगता है आपको? नहीं ना, लेकिन यहाँ तो इश्क को ही मीठा बनाया जा रहा है। जी हाँ, इश्क के स्वाद को मीठा बताया जा रहा है। तो चलिए सुने इस गीत को जिसमें आवाज है कैलाश खेर और साथियों की। तो सुने इस गीत को और समझते हैं कि भाई इश्क का स्वाद आखिर मीठा कैसे होता है।

नॉन स्टॉप गपशप में चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं किसी और विषय को लेकर। अब मैं जिस बात को लेकर बात करूंगी ना, जी हाँ, यानी कि जिस विषय को लेकर बात करूंगी, आज मुझे जो फीमेल लिसनर्स सुन रही हैं, जी हाँ, जो महिलाएं आज मुझे सुन रही हैं, वो ज़रूर आज के दिन खुश हो जाने वाली हैं। और वैसे भी छुट्टी का दिन है, जी हाँ, ईद मुबारक वाला दिन है, यानी कि जो महिलाएं आज मुझे सुनेंगी, यानी कि जो खुशखबरी मैं उन महिलाओं तक पहुँचाऊँगी, उस खुशखबरी को सुनकर ज़रूर वे आज के दिन शॉपिंग वाला मन तो बना ही लेंगी, या फिर ये भी कह सकते हैं कि आज नहीं तो कल से ही, परसों से ही, लेकिन कभी ना कभी, जी हाँ, कभी ना कभी शॉपिंग वाला मन जो है वो तो मन नहीं वाला है, क्योंकि बात कुछ ऐसी ही है जिसे सुनकर महिलाएं ज़रूर थोड़ी सी कमज़ोर होने वाली है, क्योंकि बंगाल होम इंडस्ट्री का समर कलेक्शन शुरू हो चुका है और इसी के बारे में मैं बताने वाली हूँ। तो गर्मियों के मौसम में लोग अब हल्के, आरामदायक और पारंपरिक हाथ से बनाए हुए उत्पादों की ओर तेज़ी से आकर्षित हो रहे हैं। इसी कड़ी में बंगाल होम इंडस्ट्री एसोसिएशन ने अपने विशेष समर कलेक्शन के जरिए बंगाल की समृद्ध हस्तशिल्प और हथकरघा परंपरा को नए अंदाज में प्रस्तुत किया है। इस कलेक्शन में धनियाखाली, बेगमपुरी के अलावा जामदानी, सॉफ्ट खादी, ब्लॉक प्रिंटेड मलमल और कोटा प्रिंटेड साड़ियों की खास श्रृंखला शामिल है। और इस कलेक्शन को, जी हाँ, इन साड़ियों के अलग अलग वैरायटी के कलेक्शन को अपने वार्डरोब में, अपने अलमारी में सजाने के लिए हर महिला का दिल जो है वो थोड़ा उत्सुक तो रहता ही है ना। और महिलाओं के वैसे कमज़ोरी की बात करें तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि महिलाओं के दिल की कमज़ोरी बनी रहती है, लेकिन उनमें से, जी हाँ, बहुत सारी चीज़ों में ये एक चीज़ है, साड़ी, जी हाँ, जो कि हमारे देश की पारंपरिक परिधान है। और ऐसा कहा जाता है कि जो नारी है वो साड़ी में ही सुंदर लगती है, और कहीं ना कहीं ये जो परंपरा चली आ रही है आज भी, भले ही आज साड़ी ने एक फैशन का रूप ले लिया है और तरह तरह की प्रिंटेड साड़ियों का कलेक्शन आज महिलाओं के पास होता है, तो इसी में भाई गर्मियों का मौसम है और समर कलेक्शन भी आ चुके हैं यहाँ पर, तो आप अपने पसंदीदा कलेक्शन को ज़रूर ले सकते हैं यहाँ पर पहुंचकर। और चलिए, कलेक्शन तो आप करते रहिए अपनी साड़ियों का, जी हाँ, पसंदीदा साड़ियों का कलेक्शन कीजिए, पसंदीदा साड़ियों को पहनिए, सजिए सवरिए, लेकिन फिलहाल चल रहा है कार्यक्रम नॉनस्टॉप गपशप, और चलिए नॉनस्टॉप गपशप में सुनवाऊँ आपको एक बहुत ही प्यारा सा गीत जिसमें आवाज़ है उदित नारायण और श्रेया घोषाल की।

आपके दिल की ज्योग्राफी बदली हो ना बदली हो, लेकिन इस कार्यक्रम में अब बात होगी किसी खास चीज़ को लेकर। जी हाँ, एक ऐसी खास चीज़ जिसके बगैर आज का जो खास दिन है, आज का जो खास पर्व है, वो शुरू ही नहीं होता। जी हाँ, चांद के बगैर भला ईद कैसे, है ना। तो हम ये तो कह सकते हैं कि चांद के साथ ईद का जो कनेक्शन है वो सदियों का है, और ठीक उसी तरीके से बॉलीवुड के साथ चांद का जो कनेक्शन है वो कोई आज का नहीं, जी हाँ, सदियों से चला आ रहा है ये कनेक्शन, चाहे चांद के साथ ईद का हो या फिर चांद के साथ बॉलीवुड का हो। जी हाँ, बॉलीवुड की दुनिया में भी चांद को दी गई है एक खास जगह, और न जाने कितने ही गाने बन चुके हैं, गाए जा चुके हैं, संगीत तैयार किया जा चुका है सिर्फ और सिर्फ इस चांद को सजाने के लिए अलग अलग गीतों के माध्यम से। तो चलिए, जब खूबसूरत चांद को लेकर ही हो रही है इतनी बातें, तो बॉलीवुड की दुनिया से एक गीत चुनकर लाई हूँ मैं आप सभी के लिए फिर एक बार चांद के। जी हाँ, खूबसूरत चांद को लेकर ही है ये गीत, और उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज़ में सज उठा था ये गीत।

10:55 मिनट है स्टोरी घड़ी का समय, यानी कि आज के इस कार्यक्रम को करना होगा यहीं पर समाप्त। लेकिन जाने से पहले फिर एक बार ईद मुबारक सभी श्रोताओं को। इसी के साथ आज के इस कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। मिल रही हूँ बहुत जल्द, समय रहेगा 11:10 लेकर आऊंगी कार्यक्रम लोग आ गई उनकी याद। और इस कार्यक्रम को सुनने के लिए आपने ट्यून करना है 100.1 FM गोल्ड। तब तक सुनते रहिए हरिहरन, कविता कृष्णमूर्ति और साथियों की आवाज में इस गीत को।

आकाशवाणी कोलकाता का एफएम रेनबो चैनल है। मैं हूँ आपके साथ हरजी आदिल और कार्यक्रम है तीन का तड़का। शुरुआत होगी और बहुत सारे अपडेट्स होंगे, एंटरटेनमेंट भी होगी और एक बहुत ज़रूरी योजना जो आप तक हम पहुँचाएंगे। और फिलहाल आप जुड़े रहेगा हमारे साथ और कार्यक्रम का आरंभ करते हैं तीन का तड़का का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट योजना से, और वो है सुकन्या समृद्धि योजना। और इस योजना के तहत आप समझ गए कि सुकन्या है तो किसी भी बालिका के लिए कुछ न कुछ बेहतर सरकार ने चुना होगा। तो इसमें शर्त बस इतनी है कि बच्ची 10 साल से छोटी होनी चाहिए, यानी कि उम्र में छोटी होनी चाहिए 10 वर्ष से। और

उम्र की इस पड़ाव पे जो पेरेंट्स हैं वो उनके बेहतर भविष्य के लिए, बेहतर भविष्य के लिए वो योजना बना सकते हैं आर्थिक रूप से उसे मतलब संभल करने के लिए, मजबूत बनाने के लिए वो ये कर सकते हैं। और इसमें कुछ कंडीशंस हैं, शर्तें हैं, वो ये हैं कि प्रतिवर्ष न्यूनतम जो सबसे कम है वो 250 रुपये आपको जमा करना होगा और अधिकतम जो है 1.5 लाख जमा किए जा सकते हैं। खाता खोलने की तारीख से 14 साल तक पैसे जमा किए जा सकते हैं और योजना 21 साल में मच्योर हो जाएगा, यानी परिपक्व हो जाएगा। खाता खोलने की जो पात्रता है वही हमने बताया कि माता पिता या कानूनी अभिभावक जो हैं वो अपनी 10 वर्ष से कम आयु की बेटी के लिए ये खाता खोल सकते हैं। एक परिवार में अधिकतम 2 लड़कियों के नाम ही खाता खोला जा सकता है। जुड़वां या फिर उससे अधिक बच्चियों के मामले में ये सीमा शिथिल होती है। और जमा राशि की सीमा जैसे कि हमने बताया कि 250 रुपये मिनिमम, 250 पर एनम और अधिकतम 1.5 लाख रुपये। यदि किसी साल न्यूनतम राशि जमा ना की जाए तो 50 रुपये प्रति वर्ष की पेनल्टी के साथ खाता फिर से चालू किया जा सकता है। और बात ये बात है कि निकासी विड्रॉल कब होगी और कितनी होगी, तो बेटी के 18 वर्ष की आयु पूरी कर लेने या फिर 10वीं कक्षा पास कर लेने के बाद उसकी उच्च शिक्षा के लिए पिछले वर्ष के बैलेंस का अधिकतम 50% निकाला जा सकता है, पूरा नहीं। और ब्याज और कर लाभ, ऑब्वियस है कि जब हम पैसे जमा करेंगे तो अपने फायदे के बारे में जरूर सोचेंगे। तो इसमें वर्तमान में सरकारी योजना पर 8.2% वार्षिक दर से ब्याज मिल सकते हैं और इसमें निवेश की गई राशि, अर्जित ब्याज और मैच्योरिटी पर मिलने वाली रकम पूरी तरह से आयकर मुक्त होगा, टैक्स फ्री होगा। समय से पहले खाता बंद करना, ये उसकी एवज में क्या हो सकता है वो हम बता देते हैं। केवल खाता धारक यानी कि बेटी की गंभीर बीमारी या फिर दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु की स्थिति में ही 21 वर्ष से पहले खाता बंद करने की अनुमति है। और हम चाहते हैं, हमारी कामना है, हमारी दुआ है कि लंबी उम्र मिले आपकी बिटिया को और वो अपनी मच्योर जो राशि है वो लेकर ही आगे अपने जीवन में कुछ बेहतर करें। और बेहतर जीवन सभी का अधिकार है, तो सरकार उसी अधिकार को देने के लिए ये सुकन्या समृद्धि योजना का आरंभ किया है। तो आप अगर अभी तक नहीं कराए हैं तो आप जरूर करा लिए, अपने बच्चे के भविष्य के बेहतरी के लिए कहते हैं। तो फिलहाल आप जुड़े रहिए हमारे साथ आकाशवाणी कोलकाता के FM रेनबो 107 पर, दिल से दिल तक बातें होंगी। और फिलहाल कुछ गाने भी हमने लगा दिए हैं तो उसे एंजॉय कीजिएगा, कहीं और नहीं, कोलकाता, आकाशवाणी कोलकाता के FM रेनबो चैनल पर।

पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।

आकाशवाणी एफएम रेनबो म्यूजिक योर्स, मैं हूं आपके साथ आरजे आदिल और आप सुन रहे हैं तीन का तड़का हमारे साथ। और बात अभी चली थी तो अभी हमने एक योजना की बात की है जो सुकन्या समृद्धि योजना है, जो सभी बच्चियों के लिए बहुत जरूरी है जो 10 साल से नीचे की हैं और 14 साल की उम्र के पहले हैं। तो ये चीज़ें आप सभी ज़रूर ज़रूर आगे बढ़ाएं अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए। और आगे चलते हैं, जो थोड़ा सा एंटरटेनमेंट भी है और थोड़ी सी एक चीज़ है कि किसी को कुछ भी कह देना, किसी से कुछ भी कह लेना, ये भी सही नहीं है। अब देखो चलते हैं बॉलीवुड की तरफ। बॉलीवुड की एक बहुत ही खूबसूरत और अब टैलेंटेड एक्ट्रेस भी हैं, क्योंकि हमने इनको वेब सीरीज़ में देख लिया है तो इनकी एक्टिंग भी मुझे समझ आ गई। फिल्म इनकी बहुत नहीं हमने देखी तो इसलिए उतना आइडिया नहीं था, लेकिन जब हम इनकी वेब सीरीज़ देखिए, नाम अगर मैं बताऊं तो आप समझ जाएंगे कि बात हम किस वेब सीरीज़ की कर रहे हैं। एक्ट्रेस की बात कर रहे हैं और एक्ट्रेस हैं उर्वशी रुतेला। उन्होंने कुछ कंडेम किया है, मैंने कुछ चीज़ें नकारते हुए कहा है कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, नकारात्मकता ना फैलाओ प्लीज़, उनका ये कहना है। बेसिकली हुआ क्या है, कुछ मीम्स अभी काफ़ी वायरल हो रहे हैं और उसमें अभिनेत्री ऐश्वर्या राय और प्रियंका चोपड़ा के सामने घुटने टेके हुए दिखाया गया उनको। तो इस पर उर्वशी ने कहा है, हर अभिनेत्री का अपना एक सफ़र, कड़ी मेहनत और किस्मत होती है। उन्होंने कहा कि महिलाओं की एक दूसरे से तुलना करना सिर्फ नकारात्मक फैलाता है, तो बी पॉजिटिव और कंपेयर करना अलग सी चीज़ें, कंपेयर नहीं कर सकते, सबकी अपनी अपनी जगह होती है। बात सही है, अगर वो को अपनी जगह बना पाई है 70 mm पे तो इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ टैलेंट तो है। और सब अपने अपने अंदाज में, सब एक जैसे हो जाएं तो फिर कौन टिक पाएगा, फिर कंपटीशन कुछ अलग ही ढंग का हो जाएगा। लेकिन सबकी अपनी अपनी खासियत होती है और एक्टिंग इसके सेंटर में होना चाहिए। तो उर्वशी के साथ मैं हूँ भाई, तो फिलहाल जुड़े रही हैं आप आकाशवाणी कोलकाता का एफएम रेनबो 107 और ये म्यूजिकली योर्स। और दिल से दिल तक बातें होंगी, दिल से आदिल तक की भी बातें होंगी, मैं हूं आपके साथ आरजे आदिल। तो कुछ गाने सुनते हैं, जब बात चल गई है उर्वशी की, बहुत ही ब्यूटीफुल एक्ट्रेस हैं और एक्ट्रेस का मैंने दिखने में भी सुंदर है और एक्टिंग बहुत अच्छी है। आप कभी उनकी वेब सीरीज देखिएगा जरूर। 90 अब जुड़ रही है हमारे साथ आकाशवाणी कोलकाता एफएम रेनबो 107, दिल से दिल तक।

आकाशवाणी कोलकाता का ये एफएम रेनबो चैनल है और मैं हूं आपके साथ आरजे आदिल। आकाशवाणी की एक अलग ही कहानी है, हर शख्स से जुड़ी हुई। हम जितने आजीज हैं और जितने भी लोग जुड़े हैं आकाशवाणी से, और जब से जुड़े हैं तब से एक अलग ही फीलिंग, एक अलग ही खूबसूरती है दिल में। इतनी खूबसूरत जगह हमारे तो आप सभी की है और आप सभी के दिलों में हम हैं। ये वही प्लेटफॉर्म है जो आपसे जुड़ने का मौका देता है, और शायद कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा कि इतना प्यार, इतना मान सम्मान मिलेगा आप सभी से। और जिस शहर में भी रहा वहाँ आकाशवाणी ने इतनी पॉपुलैरिटी दी, इतनी खूबसूरती खूबसूरत लोगों से मिलवाया। इनफैक्ट तब जाके पता चला, सच बताऊं ना, आकाशवाणी की अगर बात मैं करूं ना, तो आकाशवाणी से जुड़ने से पहले जिंदगी हमारी कुछ अलग ही ढंग की थी। आकाशवाणी से जुड़ने के बाद से एक अलग ही शख्स मुझ में आया, और शायद मैं कभी तलाश भी नहीं पाता उस शख्स को जो आज मैं हूं। और ये सब दीन जो है वो आकाशवाणी की है। सिर्फ एक आवाज के जरिए कोई किसी के दिल में इतनी गहरी जगह, इतनी गहरी छाप बना सकता है क्या? सिर्फ आवाज के बलबूते किसी के चेहरे पे स्माइल लाई जा सकती है क्या? सिर्फ आवाज के बलबूते याददाश्त के उस पर्दे पे खूबसूरत तस्वीर बन सकती है क्या? सिर्फ आवाज के बलबूते कोई कदम कदम किसी के साथ रह सकता है क्या? कोई आवाज के बदौलत ही उसके बीच नार रह के भी मौजूद रह सकता है क्या? ये सब आकाशवाणी की देन है। तो सलाम है आकाशवाणी को और आप सभी को भी, क्योंकि आकाशवाणी को आपने वो जगह दी अपने दिलों में कि आज भी ये जिंदा है और कल भी ये जिंदा रहेगा। फिलहाल आप जुड़े रहिए आकाशवाणी कोलकाता 107 पर, दिल से दिल तक बातें होंगी। बात अगर चल गई है दिल में जगह बनाने की, तो एक शख्स है जो अपनी जगह हम सभी के दिलों में बना बैठा है, बाबिल खान, इरफान खान के सुपुत्र हैं और काफी टैलेंटेड हैं। नो डाउट फादर का असर तो आते ही आता है, तो बहुत ही खूबसूरत एक्टिंग के मालिक हैं ये भी। और इन्होंने अपने करियर की शुरुआत काला फिल्म 2022 से की थी, और हिंदी सिनेमा में अपने अभिनय करियर की शुरुआत करके उन्होंने पहचान बनाई और अपने पिता के मौजूदगी को भी दर्शाया, क्योंकि बहुत सारे छाप उनके फादर की है। अलग बात है कि वो अपनी जगह भी बना बैठे हैं, और आज की डेट में उन्होंने मलयालम फिल्म में भी कदम रख दिया है, और फिल्म का नाम है गांधी बाजार संडे मार्केट। और सिनेमा अपने इससे मलयालम फिल्म से डेब्यू उन्होंने किया है, और उन्होंने कहा भी है कि मलयालम सिनेमा की जो मेरे दिल में खास जगह है, क्योंकि इसमें कहानियों को ईमानदारी, संवेदनशीलता और भावनात्मक गहराई से दिखाया जाता है। और आजकल सिलीगुड़ी में इसकी शूटिंग चल रही है, तो भाई हमारे पश्चिम बंगाल में हैं बाबिल खान, तो जिक्र करना बहुत ज़रूरी रहा है, इसलिए हमने जिक्र कर दी है। वैसे इनके फिल्मों को भी गाने हम सुनेंगे, तो आप कहीं मत जाएगा, जुड़े रहिएगा आकाशवाणी कोलकाता के एफएम रेनबो 107 से, जो बातें दिल से दिल तक होती हैं। अगर आप सुन रहे हो हमें तो थैंक यू सो मच, और कुछ गाने आप इंजॉय कीजिए। बैक टू बैक हम दो सॉन्ग लगाने जा रहे हैं, उसके बाद से फिर मिलते हैं इस म्यूजिकल ब्रेक के बाद। मैं हूँ आपके साथ आरजे आदिल।

आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल

आकाशवाणी एफएम रेनबो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं जी। और प्रोग्राम चल रहा है तीन के तड़का, जो कि तीन से चार हर रोज हम मिलते हैं आपसे। और आज मैं हूं आपके साथ आरजे आदिल। और अब अगला जो एक खबर जो लेकर आ रहे हैं बॉलीवुड से, वो ये है कि धर्म पाजी अपने

बॉलीवुड के ही मैन जो कहलाते हैं, वो भले ही हमारे बीच नहीं रहे हैं, लेकिन अपने एक्शन, अपने उस खूबसूरती और एक्टिंग और फिर उनकी शायरी बहुत खूब, उन सब की वजह से आज हमारे दिलों में बसे हुए हैं और बहुत सारे लोग उनके फैन रहे हैं। इवन फिल्म इंडस्ट्री के, हिंदी सिनेमा फ्रेटर्निटी के वो लोग भी काफ़ी इंस्पायरिंग रहे हैं। कई लोगों ने उनको देख के फिल्में करी हैं और आज भी सलमान खान को उसमें काउंट कर सकते हैं आप, बिल्कुल कॉपी करते हैं उनकी और बहुत इंस्पायरिंग है वो सभी के लिए और बहुत सारे लोगों के लिए। तो आज भारत सरकार ने उनको सम्मानित किया है पद्म विभूषण से और इस पे परिवार काफ़ी भावुक है और हेमा मालिनी भी भावुक दिखी हैं, फूट फूट कर उनकी बेटी आहाना भी रोई हैं। और हुआ ये कि मरणोपरांत उनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है, उनकी पत्नी हेमा मालिनी ने धर्मेंद्र की ओर से ये सम्मान स्वीकार किया और हेमा मालिनी जी ने धर्मेंद्र की ओर से ये जो स्वीकार किया उसके बाद से वहीं मौजूद थी उनकी बेटी आहाना देओल, वो मतलब कि जार कतार आंसुओं से रोने शुरू हो गई थी। और इस पे उनकी बिटिया ईशा देओल ने भी कुछ कहा है, कहा कि बहुत इमोशनल लाइनें बोली हैं उनकी कि हम दिल से चाहते थे कि काश आप यानी कि धर्मेंद्र जी सफ़ेद कमीज और नीले सूट में यहाँ होते, हमेशा की तरह उस सुंदर और युवा लड़के की तरह उत्साहित जो पुरस्कार प्राप्त करने जा रहा। कितनी इमोशनल चीज़ है, वाकई इतना जिंदा दिल शख्स। देखो ये तो ऑब्वियस है कि जो आया है उसे जाना है, लेकिन इतनी गहरी छाप छोड़कर बहुत कम लोग होते हैं जो जाते हैं, और वो जाते सिर्फ नाम के लिए, वो हमारे दिलों में बसे हुए हैं, जहन में बसे हुए हैं। और उनके गाने ले लो, उनके एनर्जी ले लो, उनकी बातें ले लो, कितनी मशक्कत के साथ हवा की उल्टी दिशा में जा करके उन्होंने सफलता हासिल की है। और उनके भी वो कितनों के इंस्पिरेशन रहे हैं, तो उनके भी इंस्पिरेशन रहे हैं दिलीप साहब, जो उनकी बातों में झलकते थे। कभी भी पुराने इंटरव्यूज उनको सुन के देखिएगा, वहाँ पे सारी बातें बहुत ही मतलब सुनो तो सुनते सुनते रहने का दिल करता है। तो चलिए वो जहाँ भी रहें बहुत ही सुकून से रहें और हमारी दुआएँ उनके साथ हैं, प्रार्थनाएँ कामनाएं हमेशा उनके लिए हैं कि वो जहाँ भी रहें, जैसे मुस्कुराहट सबको लिए दी हैं उन्होंने, वो भी हमेशा मुस्कुराते रहें। फिलहाल उनके कुछ गाने हम सुनते हैं यहाँ पे, बने रहिए हमारे साथ। आकाशवाणी कोलकाता है, फिल्म रेनबो 107 पे दिल से दिल तक बातें हो रही हैं। मैं हूँ आपके साथ आरजे आदिल।

रंगत है, दिल में मोहब्बत है, क्या जिसमें औरत है, बस जन्नत ही जन्नत है।

ड्रीम गर्ल, ये मूवी कल्ट मूवी बन गई थी भाई। आज भी जितने भी लोग मतलब अगर एक दूसरे को चाहने वाले हैं तो ये मतलब ड्रीम गर्ल ही होती है उसके, यही नाम आता है। लेकिन अगर ड्रीम गर्ल बोला जाए तो पहले तस्वीर जो आती है वो हेमा मालिनी जी की आती है, और ये पर्दे पे धर्मपाल जी के साथ जो फिल्माई गई है, ये गाने या फिल्म या दोनों की जोड़ी में जितनी भी फिल्में बनी हैं अल्टीमेट फिल्म में रही हैं। चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम, अब बात ड्रीम गर्ल के बाद से दामिनी की कर लेते हैं। दामिनी यानी कि मीनाक्षी शेषाद्री, अब 30 सालों के बाद से वो कम बैक कर रही हैं बॉलीवुड में, और ये खबर आई है हमारे तक। और अभिनेत्री मीनाक्षी शेषाद्री 30 साल बाद एक्टिंग में कम बैक कर रही हैं और मुंबई आ गई हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर किया कि चाहे लीड या सपोर्टिंग रोल या फिर कोई छोटा सा रोल, मेरे लिए सबसे ज़रूरी ये है कि वो प्रभावशाली हों। मैं ऐसे किरदार निभाना चाहती हूँ जो मुझे एक कलाकार के रूप में चुनौती दे।

देख लो भाई, आज भी इस उम्र में चैलेंजेस उनको कबूल हैं। और आप अगर क्रिकेट से आपको लगाव हो तो आपने देखा होगा कि कई जॉनर हैं उसमें, बैटिंग है, बॉलिंग है, मेन फोकस इसी पे होता है। लेकिन कई ऐसे प्लेयर्स हैं जो अपने फील्डिंग की वजह से भी जाने जाते हैं, यानी कि अपने एक्ट की वजह से, आप फील्ड पर कितने एक्टिव हैं उसकी वजह से। तो ये जो मीनाक्षी शेषाद्री हैं, नो डाउट बहुत ब्यूटीफुल एक्ट्रेस थी, बल्कि इनका जो सबसे इम्पॉर्टेंट यूएसपी जिसको कहते हैं ना, वो था इनकी डांस, वो भी क्लासिकल डांस। ज़बरदस्त डांसर थी और इस वजह से इनके गाने काफ़ी पॉपुलर भी रहे और गानों में जान सी आ गई है। और जब गाने बनते थे इनके, वो बिल्कुल इनको सोच के बनते थे। तो फिलहाल इनका वेलकम कीजिए और हमें इजाज़त दीजिए, हम थोड़ी देर में मिलेंगे। कहाँ पे? FM गोल्ड पे। तो आप कहीं मत जाइएगा, मैं हूँ आपके साथ आरजे आदिल और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी कोलकाता का FM रेनबो, दिल से दिल तक। तो अगर बात चल गई है मीनाक्षी जी की, तो कई फिल्में हैं इनकी जिसमें, पेंटर बाबू से इन्होंने शुरुआत की थी, लेकिन एक ब्लॉकबस्टर जिसको कहते हैं ना, एक हाई पिक पहचान बनी थी, वो फिल्म हीरो से बनी थी। तो गाने उसको एंजॉय कीजिए, हम मिलते हैं बस थोड़ी देर में।

बच्चों को किताबों के बोझ ने झुकाया, रिश्वत देना तो खुद पापा ने सिखाया। 99% मार्क्स लाओगे तो घड़ी, वरना छड़ी। लिख लिख कर पढ़ा हथेली पर अल्फा बीटा गामा का छाला, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ने पूरा पूरा बचपन जला डाला।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के ओटीटी

ई प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

घुंघरू टूटेंगे तो बिखरेंगे, बिखरेंगे तो अलग अलग आवाजों में गूंजेंगे। आप जुड़ जाएंगे हमारे साथ यहीं पे आकाशवाणी कोलकाता के एफएम रेनबो चैनल 107। दिल से दिल तक की बातें करेंगे और दिल से आदिल तक की भी बातें होंगी, तो आइए जुड़िए और गानों को एंजॉय कीजिए, कुछ बातों को एंजॉय कीजिए और यूं ही जिंदगी के सफर को खूबसूरत बनाइए, बेहतरीन बनाइए, क्योंकि आप सुन रहे हैं आकाशवाणी कोलकाता और आप समझ रहे हैं आकाशवाणी ने अपने 90 साल पूरे कर लिए हुए, देख लो, और इतनी खूबसूरती के साथ आपके साथ और ना जाने कितने ही जेनरेशन के साथ गुजरते हुए हम इस मकाम तक पहुंचे हैं। और कहा था ना थोड़ी देर पहले, यानी कि जब हम गोल्ड से पहले आपसे मिले थे, तो हमने कहा था कि एक लंबा सा सफ़र है आप सभी के साथ, अलग अलग शहरों में अलग अलग तरह के लोगों से मिले, हम बातें करें और सबके दिलों में जगह मिली, ये आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया है। तो फिलहाल आप जुड़े रहिएगा, हम समय हो गया है 7:08-09 होने को हैं और अब छायालोक का आरंभ हो गया है और आरंभ होगा प्रेजेंट, तो उसके लिए आपको जुड़े रहना पड़ेगा। फिलहाल म्यूजिक को एंजॉय कीजिए, मिलते हैं इस म्यूजिकल ब्रेक के बाद, फिर कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, तो आप कहीं मत जाइएगा।

आकाशवाणी एफ एम रेनबो म्यूजिकली योर्स 100.7 और दिल से दिल तक बातें हो रही हैं। मैं हूं आपके साथ हर आदिल और छाया लोग कार्यक्रम चल रहा है और इस कार्यक्रम में अलग अलग दिन अलग अलग चीज़ें होती हैं और आज का जो दिन है वो है बृहस्पतिवार थर्सडे और थर्सडे में आज हम बातें करेंगे नज़ारा फिल्मों का। मैं हूं आपके साथ हर आदिल। नज़ारा फिल्मों का करेंगे तो शुरुआत के देखते हैं किससे होती हैं। कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता होगा जो फिल्मों में हम सीन्स देखते हैं वो कहीं ना कहीं याद रह जाती हैं और वो याद ऐसे रह जाती हैं कि कभी भूलती नहीं है। अब जैसे कि एक फिल्म थी कहो ना प्यारो, देखी हमने ऋतिक रोशन की और डेब्यू फिल्म थी और बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हुई थी और एक तरह से जो प्रमोशन था ना वो बड़ा ज़बरदस्त था। उनके लुक्स, उनके फिजिक और इससे जो कहानी है वो हम आपको बताने जाते हैं। फिल्म के रिलीज से पहले की बात है। इसके जो मेन लीड कैरेक्टर थे मुख्य अभिनेता ऋतिक रोशन के जो पिता थे राकेश रोशन को, वो बड़ा ही विश्वास के साथ इनको लॉन्च कर रहे थे और ये जिम्मेदारी दोनों की ही बन गई थी। इसमें ऋतिक रोशन भी काफ़ी इंटू थे, यानी कि अपना पूरा जी जान लगा दिया था उन्होंने और तहलका मचा दिया था रातों रात। तो ये जो कहानी थी इनकी कहो ना प्यार की, वो बड़ी ही मतलब एक प्रेशर में, जब कोई पिता अपने बच्चे को लॉन्च करता है ना तो क्रिटिक बहुत होती है और क्रिटिक में सबसे चैलेंजेबल ये होता है कि फिल्म का चलना। अगर फिल्म नहीं चली, कि ये अक्सर ऐसे एक्टर रहे हैं जो पे उसके फादर जो या मदर हों वो काफ़ी पॉपुलर रहे अपने दौर में, लेकिन जब उनको लॉन्च किया गया तो वो बहुत लंबे नहीं चल पाए। और उसमें कई एक्ट्रेस हैं, अब नाम लेना कोई ज़रूरी नहीं है लेकिन आप सभी को पता है, लेकिन जो चले हैं उसमें बहुत सारे हैं। संजय दत्त को ले लो आप, ऋतिक रोशन को ले लो आप, वो अजय देवगन को ले लो, उनके फादर ये अलग बात है एक्टर एक्ट्रेस नहीं थे लेकिन एक्शन डायरेक्टर थे। तो कई ऐसे एक्टर हैं कि अगर आप में वो मतलब एक्टिंग होगी, आपने सीखी होगी, इवन कपूर फैमिली देख लो, मतलब कई जनरेशन उसमें आई हैं, सारे के सारे सक्सेस रहे हैं। लेकिन फिलहाल हम बहादुरी की तीसरी क्वेश्चन कर रहे हैं तो फिर उनके सॉन्ग सुनते हैं बैक टू बैक और फिर मिलते हैं इस म्यूजिकल ब्रेक के बाद। कार्यक्रम छाया लोक, मैं हूं आपके साथ आरजी आदिल, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी कोलकाता का एफएम रेनबो चैनल 107, दिल से दिल तक।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

आकाशवाणी कोलकाता का आप एफएम रेनबो चैनल सुन रहे हैं 107 यानी कि दिल से दिल तक बातें होती हैं। यहाँ पे मैं हूँ आपके साथ आरजे आदिल और प्रोग्राम चल रहा है छाया लोग। और छाया लोग में आज जो है थर्सडे का दिन है यानी कि बृहस्पतिवार है और बृहस्पतिवार को होता है बहुत ही बातें नज़ारा फिल्मों की और उस पर चर्चा होती है। तो ये थे ऋतिक रोशन की उस फिल्म को होना प्यार से। और अब जो फिल्म आपने देखी होगी, फिल्म में एक आई थी मिस्टर इंडिया, वो उसके साथ कई खास बातें हैं। खास बातें ये भी हैं, सबसे पहले तो ये कि अनिल कपूर एक घड़ी की वजह से अदृश्य हो जाते हैं। ये बच्चों को बहुत पसंद आती है और बच्चों की वजह से ही ये फिल्म हिट भी होती है। और कई सुपरस्टार ने इस फिल्म को छोड़ा, अनिल कपूर ने पहली फुर्सत में इसे जकड़ लिया और रातों रात स्टारडम का वो दौर देखा उन्होंने। ओह याद है, सब कुछ याद है। अगर आपने ये मूवी देखी हो तो आप भी बहुत खिलखिलाए होंगे, हंसे होंगे, बहुत रोमांचित हुए होंगे। उसमें घड़ी की वजह से वो अनिल कपूर अदृश्य हो जाते हैं, लेकिन रेड कलर की फिल्म के साथ, किसी भी रोशनी के साथ वो दिख जाते हैं। ये उस फिल्म की खूबसूरती है। दूसरी वो मेरा नाम है कैलेंडर, मैं तो चला किचन के अंदर। ये जो सतीश कौशिक थे उनकी भी एक काफ़ी अच्छी भूमिका इसमें रही है और वो पॉपुलर रहे हैं। स्पेशल इफेक्ट्स की वजह से ये फिल्म काफ़ी अच्छी लगी है। इसके पीछे के इतिहास कुछ है। और सबसे पहले इसके साथ जो खास बात ये है कि ये सलीम जावेद साहब की जो एक जोड़ी थी उसकी आखिरी फिल्म थी। इसके बाद से उन दोनों ने अपने अलग अलग रास्ते देखे और अलग अलग काम में वो लगे रहे। जावेद अख्तर साहब ने कुछ फिल्में लिखी, उसके बाद से लिरिक्स लिखने शुरू कर दिए हैं। और पहली पसंद इस जो फिल्म की, और जाहिर सी बात है कि शोले जैसी मूवी हो, जंजीर वगैरह सब फिल्में हों और जावेद अख्तर साहब सलीम

विद की स्क्रिप्ट हो और उसमें एंग्री यंग मैन ना हो. ऐसा कैसे हो सकता है? तो पहले अप्रोच इन लोगों ने अमिताभ बच्चन को ही किया था, क्योंकि दौर हो गया था, थोड़ा आगे चल बसे थे, मतलब चल बढ़े थे. 1987 आई थिंक ये फिल्म थी और अपने पीक पे थे अमिताभ बच्चन, तो लगा कि एक नया रोल है, दिया जाए अमिताभ को, अप्रोच किया जाए. लेकिन अमिताभ बच्चन ने जब स्क्रिप्ट पढ़ी तो उन्होंने इनकार कर दिया था, क्योंकि उसमें खास बात यह थी कि एक इमेज उनकी जो एंग्री यंग मैन की थी वो कहीं ना कहीं इससे धूमिल होती है. तो इस छवि को ध्यान में रखते हुए उन्होंने इनविजिबल मैन यानी अदृश्य व्यक्ति के जो कॉन्सेप्ट है, उस समय एक तो बहुत पॉपुलर भी नहीं था और नया नया सा कॉन्सेप्ट था ये, तो उन्होंने मना कर दिया, इससे इनकार कर दिया. और उसके बाद से अनिल कपूर ने ग्रैब कर लिया, और अनिल कपूर ने ग्रैब किया और श्रीदेवी की एक्टिंग, गाने, डांस, भूल पाएंगे ये वाला सॉन्ग? चलिए उसे एंजॉय कीजिए. समय हो गया है, आपकी घड़ी से मिला लीजिए, 7:32:33 होने को है और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी कोलकाता की FM रेनबो चैनल को 107, यानी कि दिल से दिल तक बातें होंगी.

आकाशवाणी कोलकाता का आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो चैनल 107 बातें दिल से दिल तक की होती है। यहाँ पे मैं हूँ आपके साथ आरजे आदिल, यानी कि बातें आरजे आदिल के साथ भी होगी, यानी दिल से आदिल तक। और इसमें आपको अब थोड़ी सी हम आगे ले चलते हैं। एक फिल्म आई थी जो कि साउथ की एक एक्ट्रेस ने सिल्क स्मिता उन पे ये फिल्म बनी हुई थी, या उसमें दिखाया गया था कि कैसे शुरुआती दौर में उनके साथ नाइंसाफियां होती हैं, ब्रेक तो मिल जाता है लेकिन उनकी फिल्में को मतलब टुकड़े टुकड़े में काट दिया जाता है, मतलब वो पिक्चर बहुत अच्छे तरह ढंग से दिखाई नहीं जाती है। और इसमें यही कैरेक्टर दिखाया जाता है और विद्या बालन ने बहुत ही शानदार तरीके से इस अभिनय को किया है। बॉलीवुड और ग्लैमरस इंडस्ट्री की एक चकाचौंध की कहानी उसमें दिखाई गई है और हर कोई जानता था कि आखिर हर समय लाइमलाइट में रहने वाले उनके जो पसंदीदा एक्टर एक्ट्रेस होते हैं उनको कितने चैलेंजेस फेस करने होते हैं। बॉलीवुड में अब तक कई फिल्में बन चुकी हैं जो पर्दे के पीछे की असली कहानी कई बार पता चलती है, कई बार नहीं पता चलती है, लेकिन द डर्टी पिक्चर के विद्या बालन, नसरुद्दीन शाह और इमरान हाशमी के जो तुषार कपूर भी कह सकते हैं लीड कैरेक्टर में, यानी एक्टर रहे हैं उसमें, और 2011 में रिलीज हुई थी फिल्म। ये साउथ की जो मशहूर एक्ट्रेस अदाकारा हैं सिल्क स्मिता की असली जिंदगी में बनाई गई है। और कई बार चीज़ें इस तरह से देख के जान के आपको अनुभव होता है कि फिल्में और कितनी चैलेंजिंग होती हैं। ऐसे ही कोई एक होता है स्टार सन डॉटर हों, लेकिन उनके लिए चैलेंजेस ये होती हैं कि वो अपने अभिनय को कैसे मैच कर सकें, क्योंकि उनके फादर मदर यानी कि उनके पेरेंट्स में से कोई भी हो जिन्होंने एक अच्छा मकाम बनाया हुआ है, उनको कैसे उसको जस्टिफाई करना होगा, उनके मान मर्यादा को बचाए रखना होगा। बहुत प्रेशर भी होता है भाई, आसान काम नहीं होते। जैसे एक डॉक्टर का जो बच्चे हैं वो डॉक्टर बने और अपने पिता चाहे माता के तरह उनके हाथों में शिफा हो, यानी कि वो काम उनका बेहतर हो, ये मामूली चैलेंज नहीं होता अगर पेरेंट्स काफ़ी स्टैब्लिश हों और पॉपुलर हों। तो वही चीज़ यहाँ भी है कि एक रॉ एक्ट्रेस आती है, फिल्मों में ट्राई करती है और अचानक से ब्रेक मिलता है, और कैसे पहली फिल्म से उनके सभी सीन डायरेक्टर द्वारा काटे जाते हैं और सिल्क अपने करियर के लिए कई लोगों को सहारा लेती है, फिर जाके कामयाब होती है और फिर उसको अलग नाम और नज़रिए से देखा भी जाता है। लेकिन इस बात को हम गानों के ज़रिए सुने तो ज़्यादा बेहतर है। तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ आकाशवाणी कोलकाता के एफएम रेनबो चैनल पे, और समय हो गया है 7:50 और हम बातें करेंगे इससे जुड़ी हुई ढेर सारी और फिल्में। और ये जो आज के दिन है थर्सडे यानी कि बृहस्पतिवार, वो छाया लोक के एक अलग रंग को दिखाता है, यानी कि यहाँ पे बातें होती हैं फिल्मों के नज़ारों की। और नज़ारों की अगर बात करें तो गाने खूबसूरत ज़रूर प्ले करने होते हैं, और ये जो गाना है जो हम प्ले करने जा रहे हैं वो हैदराबाद में शूट किया गया है फिल्म सिटी में, और हमने वो जगह देखी भी हुई है। तो कभी आपको भी वक्त लगे, अगर मौका लगे तो आप ज़रूर जाइए और फिल्म सिटी हैदराबाद घूम कर आइए। वैसे कहते हैं कि धूप में निकलो, घटाओं में नहा कर देखो, ज़िंदगी क्या है किताबों को हटा कर देखो, बहुत सारी चीज़ें घूमने से भी सीखता है इंसान। तो वो सीखने का, जानने का, समझने का, दुनिया बहुत खूबसूरत बनाए हैं ऊपर वाले ने, तो उसको देखना जानना भी ज़रूरी है। कुछ मैनमेड जगह भी हैं जो बहुत ही पॉपुलर रही हैं, बहुत खूबसूरत रही हैं, तो उसको भी इंजॉय करने की ज़रूरत है। लेकिन फ़िलहाल हम इतना ही कहना चाहेंगे कि आप बने रहिए आकाशवाणी कोलकाता के एफएम रेनबो चैनल से, यानी कि 107 से, और प्रोग्राम चल रहा है छाया लोक, और आपके साथ मैं हूँ आरजे आदिल। अब सॉन्ग है वो आपके लिए हमने क्यू कर दिया हुआ है, तो इसे ज़रूर सुनिए और इन्जॉय कीजिए, क्योंकि कहते हैं कि अगर म्यूज़िक बेहतरीन ना लगे तो फिर निरस्ता से आ जाती है। इसलिए एक फिल्म का डायलॉग भी है, रन मूवी देखी होगी आपने, देखिए तो डायलॉग याद करो, हाँ वही डायलॉग। तो इन्जॉय कीजिए ये वाला सॉन्ग हमारे साथ आकाशवाणी कोलकाता के एफएम रेनबो चैनल पे, दिल से दिल तक बातें होंगी।

आकाशवाणी कोलकाता का ये FM रेनबो चैनल है। मैं हूँ आपके साथ हरजे आदिल। समय हो गया है 8:02 और अब समय ये है कि आपसे बातें और जारी रखी जाए और आगे बढ़ाया जाए। तो आप बताएं क्या बातें करेंगे आप। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और कार्यक्रम को आगे ले चलते हैं। कार्यक्रम का नाम है छाया लोक। मैं आपके साथ हरजे आदिल। बातें चल रही थी, आज थर्सडे है तो थर्सडे के दिन जो स्पेशल बातें होती हैं वो होती हैं नज़ारा फिल्मों का। ये टॉपिक रहता है और नज़ारा फिल्मों का। तो अगर बात करें, अगर आपने मधुर भंडारकर को जाना होगा, अगर आपने उनकी फिल्मों को देखी होगी, तो बड़ा ही प्रैक्टिकल होती है। और एक फिल्म है फैशन, फैशन की दुनिया में जितने भी चैलेंजेस है उसमें दिखती हैं। फैशन में कामयाबियाँ कितनी जल्दी, मतलब कामयाबी की बुलंदियों को कोई छू रहा होता है और थोड़ा सा भी डगमगाए तो कैसे बुलंदियों से सीधे, कहते हैं कि अर्श से फर्श पे आती हैं, वो भी उसमें दिखाया गया है। और उसकी स्टोरी है दो समझ सकते हैं कि बॉलीवुड की सुपर गर्ल जिसको कहते हैं, वो दोनों ही नई फिल्में ऐसे की हुई हैं जो सुपर गर्ल टाइप पे हैं। एक है कंगना रनावत और दूसरी अपनी प्रियंका चोपड़ा, दोनों उसमें होती हैं। तो कंगना रनावत पे थोड़ा सा ये फिल्म इर्द गिर्द घूमती है और मधुर भंडारकर द्वारा निर्देशित फिल्म है ये, बड़ी हिट साबित हुई थी। कंगना रनावत में ये दिखाया गया है कि वो एक छोटे से शहर से सुपर मॉडल बनने का सपना लिए मुंबई पहुँचती हैं और अपने सपने पूरे करते हैं। कामयाबी मिलने पर मेघना अभिमानी हो जाती है और उनके दोस्त और बड़े प्रोजेक्ट दोनों हाथ से निकल जाते हैं। पछतावा होने पर मेघना दोबारा मुश्किलों का सामना करने के बाद अपना कमबैक करती हैं। तो इसमें क्या होता है और वहीं इनसे ये सीख मिलती है कि कामयाबी मिलना ये अलग सी चीज़ है, उसको पकड़ के उस पोजीशन पे खड़े रहना और उस पोजीशन पे डगमगाना नहीं, ये बड़ी इम्पोर्टेंट होता है, मतलब कि आप उस पोजीशन पे स्टे करें। तो चलिए अब इससे बेहतर ये होगा कि उस फिल्म का गाना सुनते हैं, बहुत जो मेरा फेवरेट वाला है वो सुनते हैं। और यहीं पे आकाशवाणी कोलकाता के FM रेनबो चैनल पर 101.107 और दिल से दिल तक, दिल से आदिल तक बातें होंगी।

आकाशवाणी फेबरीन वो 107 दिल से दिल तक मैं हूँ आपके साथ हरजय दिल। कार्यक्रम कर रहा चल रहा है छाया लोक, और उसमें आज जो खास बात है वो ये है कि आज की स्पेशल डी पे आज फिल्मों का नज़ारा हम देख रहे हैं, तो नज़ारा क्या है वो भी हम आगे बताएंगे। मधुर भंडारकर की बात चली तो फैशन की बात चली और भी फिल्मों की बात चली, तो एक फिल्म हम मिस क्यों कर रहे हैं, तो उस फिल्म की बात करते हैं हीरोइन की। मतलब कि मधुर भंडारकर की वो कोशिश रहती है कि वो बड़ा ही रियल फिल्म बनाए, और इसके लिए बहुत चैलेंजिंग भी होता है। कई फिल्में उनकी आप देखेंगे बहुत चैलेंजिंग होते हैं, रियल इश्यू पे बनाना चाहते हैं। अब तो वो थोड़ा सा सीन से मार्जिन पे चले गए हैं, बहुत सारे एक्टर डायरेक्टर वगैरह अब अलग अलग सब्जेक्ट पे बना रहे हैं, लेकिन एक ट्रेंड जो इसमें चलती रही है, जो लीड एक्ट्रेस हैं जो अलग अलग कैरेक्टर्स को प्ले करती हैं, तो उसमें है ना कि वो वर्सटाइल कहलाने के लिए और इनफैक्ट एक्टिंग सीखने के लिए वो इस तरह की फिल्में करती हैं। जैसे हीरोइन फिल्म, हीरोइन फिल्म आप मानेंगे नहीं, पहले ये फिल्म मिली थी ऐश्वर्या राय को, कुछ सीन शूट भी हो गए थे लेकिन अचानक से उनको छोड़ के जाना पड़ा क्योंकि वो प्रेग्नेंट हो गई थी। तो प्रेगनेंसी के दौरान वो फिल्म को उनको छोड़ना पड़ा और ये आई हिस्से में किसके, करीना कपूर के। करीना कपूर के जो बॉडी लैंग्वेज स्टाइल वगैरह जो हैं आप यकीन नहीं करेंगे, वही करीना है जो मतलब कहते हैं ना कि रियलिस्टिक फिल्म के साथ साथ सभी एक्टर एक्ट्रेस को स्टार सभी को जस्टिफाई करना पड़ता है, उस कैरेक्टर में उतरना पड़ता है और ये उतरी भी। तो इसमें और भी जो कैरेक्टर थे, लीड कैरेक्टर थे उसमें, करीना कपूर, अर्जुन रामपाल, रणदीप हुड्डा जो कि एक बहुत ही फाइन एक्ट्रेस हैं, एक्टर हैं, इनके कई फिल्में हमने देखी हैं और आजकल उनके वेब सीरीज भी काफ़ी पॉपुलर हो रहे हैं। बहुत ही जेन्युइन प्रैक्टिकल मतलब दिखते हैं अपने

के लिए. और इसमें होता क्या है कि फिल्म के एक्ट्रेस का किरदार निभाया है करीना कपूर ने, जो अपने लव रिलेशन के चलते चर्चा में रहती हैं. डूबते करियर को बचाने के लिए एक्ट्रेस एक ऐसे पीआर यानी कि दिव्या दत्त का हाथ थामती हैं, जो उनके बारे में सेंसेशनल खबरें लिखकर उन्हें सुर्खियों में लाती हैं. और एक्ट्रेस बड़ी फिल्मों में काम करने के लिए अपने कनेक्शन का इस्तेमाल करती हैं. और फिर मधुर भंडारकर के निर्देशन में बनी एक फिल्म बड़ी हिट साबित होती है. और फायदे की जो बात है वो करीना कपूर को भी एक अलग कैटेगरी में लाया गया, यानी कि फाइन ट्यून जो एक्ट्रेस होती हैं उसमें उनका मतलब उनकी गिनती होनी शुरू हो गई. जब इतनी बात चल गई है तो चलो सॉन्ग भी सुन लेते हैं और फिर मिलते हैं इस म्यूजिकल ब्रेक के बाद. तो कहीं मत जाइएगा, जुड़े रहिएगा आकाशवाणी कूल गदग एफएम रेनबो चैनल से 107. दिल से दिल तक बातें हो रही हैं और बातें दिल से आज दिल तक भी हो रही हैं.

आकाशवाणी कोलकाता का एफएम रेनबो 107 बाधे दिल से दिल तक बाधे दिल से हाँ दिल तक और समय हो गया है 8:28 और आहिस्ता आहिस्ता हमारे जाने का समय होता चला जा रहा है लेकिन बातें बहुत करनी है तो आप घबराइए जो बच्चे कल करेंगे ना कल भी हम आपके बीच होंगे तो आप कहीं जाइएगा मत है ना फिलहाल जुड़े रहिएगा हमारे साथ और अभी अभी जो बात हम कहने जा रहे हैं फिल्मों से जुड़ी हुई हैं और तस्वीरें बहुत सारी हैं फिल्में बहुत ज़्यादा मुशक्कत से बनती हैं लिखी जाती हैं एक्टर उसी में सोचे जाते हैं फिर बहुत सारे चेंजेस होती रहती हैं कई बार एक्टर्स इम्प्रोवाइज भी करते हैं और तब जाके ये फिल्म बनती है और सबसे बड़ी चीज़ थी तो एक्टर बनना और वो लक बाई चांस मूवी आई थी 2009 में उसमें देखो कुछ फिल्में ना गाने के लिए बहुत ही पॉपुलर होती हैं बहुत अच्छा एक फरहान अख्तर की एक और फिल्म आई थी कार्तिक कॉलिंग कार्तिक वो भी बड़े डिफरेंट एक सब्जेक्ट थी तो उसमें भी थोड़ा सा सस्पेंस थ्रिलर जिसको कह सकते हैं वो उस टाइप की फिल्म थी लेकिन अभी हम बात करेंगे लक बाई चांस की जो कहीं ना कहीं हीरोइन मूवी से जुड़ी हुई या फिर और भी कई मूवी से रिलेटेड हैं जो एक ही सपना होता मुंबई आने के बाद से कि उन्हें ग्लैमरस वर्ल्ड में है ना अपनी जगह बनानी होती है फिल्मों में अपनी जगह बनानी होती है ये जो ग्लैमरस वर्ल्ड है ना तभी आप पे नज़र पड़ती है जब आप थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो यानी कि आपने बहुत अच्छा किया हो और अगर आप करते रहे तो लाइमलाइट में रहते वरना धूमिल होते हुए समय मतलब नहीं लगता है और इसमें जब लक बाई चांस में जो रिलीज हुई फिल्म और फिल्म मेकिंग और कास्टिंग की कहानी देखने को मिलेगी और ये फिल्म छोटे शहरों से एक्टर बनने का सपना लिए एक शख्स जिसका नाम है विक्रम जयसिंह फरहान अख्तर और दूसरी सोना मिश्रा यानी कोंकड़ा सेन और दोनों के दोनों बहुत लाजवाब एक्टर एंड एक्ट्रेस कोंकड़ा सेन का तो कहना ही नहीं है भाई और इन्हें एक मतलब तलाश तलाश में एक दूसरे से प्यार हो जाता है और काम की तलाश में भटक रहे दोनों नौजवान कड़ी मेहनत करते हैं जिनमें से विक्रम को एक फिल्म में लीड एक्टर का रोल मिल जाता है अपने कैरियर और बड़े बजट की फिल्म में काम करने के लिए विक्रम अपनी गर्लफ्रेंड सोना को मतलब भूल जाता है और स्टार किड ईशा शेरवानी के साथ अफेयर कर बैठता है एक्टर विक्रम के पर्सनल लाइफ के इस मुद्दे को मीडिया में काफ़ी बुरी तरह उछाला जाता है इस तरह की चीज़ें दिखती हैं और ये बड़ा चैलेंजिंग हो जाती है इस तरह के रोल को निभाना और बड़ा मतलब सेट है कॉमन से ये फॉर्मूला है मूवीज़ का तो वही इसमें थी तो फिलहाल आप हम तो चाहते हैं कि वो जो मेरा फेवरेट वाला सॉन्ग है लक बाई चांस का वो सुन लेते हैं और जुड़े रहिए आप फिलहाल बहुत सारी बातें होंगी 8:31 हुए हैं बहुत सारे सॉन्ग्स बहुत सारी बातें अभी भी करेंगे हम

आकाशवाणी एफ एम रेनबो म्यूजिकली योर्स, आप सुन रहे हैं मुझे यानी कि आरजे आदिल को, और आपने ट्यून किया है 107 दिल से दिल तक। आकाशवाणी कोलकाता हमेशा से आपके साथ है, तो जल्दी से जुड़िए आप भी, जो भी वक्त बचे हैं 8:40 हो गए और सफर चल रहा है छाया लोग का। और आज जबकि थर्सडे है तो नज़ारा फिल्मों का चल रहा है, और फिल्मों के नज़ारे में एक नज़ारा था फिल्म लगान से, लगान जो कि बहुत ही चैलेंजिंग मूवी थी भाई, और एक क्रिकेट के बलबूते फिल्म हिट करा देना ये थोड़ी बड़ी चैलेंज की बात नहीं थी, और उसमें सभी एक्टर एक्ट्रेस ने अपना 100% दिया है, और ये दिखता है पर्दे पे जब आप मूवी देखेंगे। 2003 में आई थिंक ये रिलीज हुई थी, और लगान में एक बारिश का सीन है जहाँ पे गाने भी होते हैं, बारिश भी होती है। अब शूट हो रही है कहाँ भी, गुजरात के भुज में, और वहाँ पे बारिश करानी है। अब अंदाज़ा लगा लो, एक तो लोकेशन इतना डेंजरस, ऊपर से बारिश भी करानी है, भाई बारिश हो तो रेगिस्तान क्यों हो है? लेकिन बारिश कराई गई, और इसमें जो पानी है उसकी बहुत ज़्यादा अमाउंट में ज़रूरत पड़ी, तो सूखे इलाके में पानी की भारी किल्लत थी, और मेकर्स ने बड़ी मुश्किल से पानी का इंतज़ाम किया, लेकिन तब तक आमिर खान ने दाढ़ी बढ़ा ली थी जिससे उन्हें महीनों तक उसी लुक में रहना पड़ा। और एक एक कैरेक्टर, ओह क्या मूवी थी, और अलग ही जोश, देशभक्ति का एक अलग ही रूप। और बात जब चल गई है तो उस गाने को भी सुन लेते हैं जो इस बारिश के लिए स्पेशली बनाई गई है। वैसे कोलकाता में, बंगाल में, आसपास में बारिश की बूंदें पड़ी होंगी, मैं तो अलर्ट जारी जो हुई थी वो आपको पढ़ के सुनाए हैं, बाहर तो निकला नहीं हूँ, मैं बाहर निकलूँगा तो देखूँगा मौसम कैसा है, लेकिन जैसा कि खबरों में पढ़ के पता लगा कि बाहर बूंदाबांदी और बारिश, बिजली की कड़क, ये सब हुई है। तो चलिए देखते हैं, इस गाने को एंजॉय करते हैं, उन सारे मोमेंट को एंजॉय करते हैं इस गाने में जो अब प्ले होने वाला है फिल्म लगान से। घनन घनन, मैं हूँ आपके साथ हरजी आदिल।

आठ बजकर 54 मिनट हो गए, यानी कि 54 हो गए हैं। मैं हूं आपके साथ आरजे आदिल, और अब समय हो गया कि आपसे हम विदा लें। कल फिर से मुलाकात होगी, और इतना बस कहना चाहूँगा कि अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और नींद बहुत ज़रूरी चीज़ होती है, और अगर आपने नींद को मैनेज कर लिया तो समझ लो कि पूरी लाइफ को मैनेज कर लिया। एक नींद के डिस्टर्ब होने से आपकी मेंटल फिजिकल हेल्थ सब वॉस्ट हो जाती है। तो नींद कितनी इंपॉर्टेंट है, उनको उनसे जाकर पूछिए जो शायद पूरी नहीं कर पाते हैं, जो समझ रखते हैं इस बात की कि नींद ना हो पाने की वजह से कितनी वो प्रॉब्लम में चल रहे हैं। तो बस इतना कहना चाहूँगा कि खुश रहिए, खुशी किसी के आने के इंतज़ार में ना रहिए, खुद मोटिवेट कीजिए आपको। सेल्फ मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है। दुनिया तो अपने अपने में है, तो आप भी अपने में रहिए, कम से कम अपने आप को कम से कम मेंटली फिजिकली फिट रखिए। आप सही हैं तो दुनिया हसीन लगेगी, वरना बहुत मुश्किल है। तो फिलहाल इसी नोट्स पे हम आपसे विदा लेना चाहेंगे, कल फिर से मुलाकात होगी। तब तक आप सुनते रहिए आकाशवाणी कूल गदक एफएम रेनबो 107, दिल से दिल तक। मैं आपके साथ आरजे आदिल, लेकिन अब चला, कल मुलाकात होगी फिर। टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, गुड नाइट।